दुआ हदीस में ऐसी गुनाह है जो दुआओं को वापस जमीन पे मार देते हैं। आप करते रहे करते रहे करते रहे। हमारे उस्ताद कहने लगे कि खातून के पास आई, उनकी बेटी जो थी वो बेहिजाब थी बहुत। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब उसको कुछ करें, कह रहा उसका अखलाक इतना बुरा था, उसके सारे काम गलत थे। तो फिर वो खातून गुस्से में कहने लगी, आप उलमा हजरात कहते हैं कि कुब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नीचे जाएं और दुआ करें, मैं तो वहाँ जाके दुआ की, ये दुआ मेरी कबूल नहीं होती। तो उस्ताद हमारे कहने लगे कि मैंने खातून से कहा एक पानी शीशे की बोतल उसका ढक्कन आप बंद करें और उसे दरिया में फेंक दें और कई महीनों तक वो दरिया में पड़ी रहे तो क्या उसमें एक कतरा भी अंदर जाएगा। कहा खुद अमल ऐसे किए हैं कि दुआ पूरी ही नहीं होगी। वो इंसान जाने होता फिर इंसान खुदा की बारगाह में शिकवे करता है। खुद तो अपना अमल देखे, खुदा कह रहा है हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते थे, रफ़त देना चाहते थे, मगर ये खुद ज़मीन पे चिपक गया। खूब रफ़त रुश्त चिपकना राकिद, और फिर न सिर्फ चिपका बल्कि तबाही की तरफ चला गया। वह तबाह हवा हो, यानी उसने अपनी ख्वाहिशात की इत्तेबा की, शैतान की। एक ऐसे एक हिस्सा है, उस हिस्सा है आयत काफ़ी तुलानी है, एक हिस्सा है, तीनों सिचुएशन को ये डिफाइन कर रहा है। हमें भी खुदा ऊपर लेके जाना चाहता है। खुदा अपनी हर मखलूक से मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है कि खुदा फलाने से मोहब्बत करता है तो फलाने से ना। खुदा के यहाँ रंग और नस्ल और ज़बान और खुदा क्या, खुदा की मखलूक मखलूक है। खुदा अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है कि बहाने देता है उसको, कि एक बहाने के ज़रिए से बस इसको मैं माफ़ कर दूँ, कोई इसको एक बहाना दे दूँ मैं। लेकिन इंसान खुद अपने हुदूद को तोड़ने की कोशिश में, अगर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए मैं बर्बाद हो जाऊँगा, कन्फर्म है। मैंने अपना खुद जो है वो अपना स्कैन जो करता रहता हूँ, अहले बैत कर्म करते हैं, स्कैन करता रहे इंसान, अपने आप को स्कैन करना चाहिए। मैंने देखा कि अगर मेरे हाल पे छोड़ देना खुदा तो मैं दूसरे दिन बर्बाद हूँ। ये उसने कर्म किया हुआ है जो मुझे बचाया हुआ है, मेरी गलती को मुझे दिखा देता है, शर्मिंदा हो जाता हूँ, ये क्या किया मैंने। थोड़ी देर बाद इंसान है, इंसान ज़ाहिर है इंसान से गलती होती है, ज़बान से हो गई, जहन से हो गई, फौरन खुदा कहता है ये तुमने गलत किया है। कमाल ये है फौरन झुक जाओ, फौरन ठीक नहीं माने, खड़े रहना है। जिंदगी में भी ऐसा ही है, मैंने आपसे कुछ बात की, आप मुझसे नाराज हो, खुद दोस्ती कर ले, क्या है, माफी मांग लें, इंसान खत्म तो नहीं हो जाता। यही प्रैक्टिकल लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन इंसान के सोल पर इफेक्ट करती है। जब इंसान जाहिरी तौर पर अपने आप को सख्त रखा हुआ हो कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल आयतुल्ला ग़ुलाम रज़ा यजदी बहुत बड़े आलम दीन थे, हत्ता बड़े बड़े उलमा जो थे वो नजफ़ के अंदर आयतुल्ला बुजर्दी और जितने भी बड़े बड़े इनको जानते थे। अगर कुम में रहते तो बड़े बड़े महाराजी तकलीफ बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, वो शहर शहर गाँव गाँव मुल्क मुल्क तबलीग करते रहे। एक दिन बहुत थके हुए तबस मिस्र से आए, खुरासान पहुँचे, तो वहाँ कोई बूढ़ा शख्स था, उसने कहा कि हमारा करीब में गांव है और मुहर्रम शुरू हो गया है और इमाम बारगाह की चराग रोशन नहीं है क्योंकि कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो कहा मैं चलता हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत थी हालांकि, कहा मैं चलता हूँ। तो शख्स ने कहा अभी तो आप पहुँचे हैं, कम अज़ कम हरम इमाम रज़ा में जाके ज़्यारत तो कर लें। तो कहते हैं कि इमाम रज़ा ज़ाहिर ज़्याद दारत, यानी इमाम रज़ा के पास ज़ाहिर बहुत हैं मगर नौकर कम दारत, नौकर थोड़े हैं, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। फिर अगर ज़िंदगी रही वो खासियत इतनी थी दुआ, यज़द में इतनी बारिश हुई मुसलसल कई दिन तक।

कहते हैं तीन दिन कि ज़िंदगी मफलूज हो गई। जैसे हमारे यहाँ आपके सामने इस टाइम इज़हार मोहतरम, आप यकीन करें अगर इंसान को एहसास हो जाए ना अपनी रोटी आधी कर दे, इस टाइम जो सिंध और बलूचिस्तान के हालात हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। 2005 के जलजले से बदतर सिचुएशन है, लाखों घर डूब चुके हैं, गांव के गांव पर ख़त्म हो गए हैं, जगह नहीं है, सर ढांपने की जगह नहीं है। जहाँ जहाँ लोगों ने मस्जिदों में पनाह ली थी, कोटी जी में 100 लोग मस्जिद में थे, मस्जिद की छत गिर गई, 40 लोग वहीं शहीद हो गए। बलूचिस्तान के अंदर कहीं पर

ऐसे, जगह नहीं है, सर ढांपने की जगह नहीं है। जहां जहां लोगों ने मस्जिदों में पनाह ली थी, कोटी जी में 100 लोग मस्जिद में थे, मस्जिद की छत गिर गई, 40 लोग वहीं शहीद हो गए। बलूचिस्तान के अंदर कहीं पर कई हालत ही है, खाने को नहीं है। एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन को तो, मुल्क हुकूमत को तो आपको पता है, उसको तो अपनी हुक्मरानी टीवी पे आप देखें ना, सीटों के मसले, तो खुदा इनको या हिदायत दे, कुछ और तो बोल नहीं सकते वरना फिर आप कोई ना FIR गड़ जाएगी। खुदा हिदायत दे इनको, यानी आप इंसानियत मर रही है। अभी वीडियो देखी मैंने लाड़काना में, DC जो है वो जो राशन का सामान आया, टेंट आए, उसको बेच रहा है। यार इंसान इंसानियत तो हो, मैं यहां पे खड़े होकर चलो बेच दूं, मुझे नहीं पता मालूम, वहीं पर पानी में लोग डूब रहे हैं, पूरा खैरपुर शहर डूब गया है, 80-80 घंटे बारिश हो रही है, कोई खौफ नहीं है किसी हुक्मरान को, कुछ नहीं है, हिल नहीं रहा कोई, अजाब नहीं आया तो क्या है जाने मोहतर, मुझे आप बताए। वहां बहरहाल आप कोशिश करें जितना आपसे हो सकता है जाने मोहतरम, यानी वाकई अपनी तरफ से तो कोशिश करें, और जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं काम कर रही हैं, आप उनके पेजेस पे जाएं, बहुत सारी हमारे अंदर हैं, MSO है, ISO है, इमामिया है, JDC है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, आपके सामने उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनके अकाउंट्स हैं, सब कुछ हैं, आप बहरहाल जितना हो सकता है डालें, अपने दस्तरखान के 10 दिन के खानों को एक खाना रख लें, एक खाना कम से कम एक को भिजवा दें, वहाँ लाखों का खाना डेली जा रहा है लेकिन लोग पूरे नहीं हो पा रहे हैं, फिर उनके टेंट, फिर उनको घर बनाना। यज्द में भी ऐसी हालत हो गई, 3 दिन इतनी बारिश हुई कि जिंदगी मफलूज हो गई, लोगों ने ऊपर पनाह ले ली, काम खत्म। गुलाम रजा यजदी शख्स कहता है मैंने देखा कि रात को अपने घर के सहन में आया, अपना मामा उतारा और खुदा की बारगाह में हाथ फैलाए, परवरदिगार मैं इन यजदियों को जानता हूँ, ये हलाल लुकमे के लिए मेहनत करते हैं, ये अपनी औलाद को रिज़्क हलाल खिलाने के लिए कोशिश करते हैं, परवरदिगार अगर इन पर अजाब किसी एक गुनाहगार की वजह से है तो वो गुनाहगार मैं हूँ। परवरदिगार तुझे इस एक गुनाहगार की वजह से इन पर अजाब न डाल, तो इनको माफ़ कर दे। वो कहता है अभी ये दुआ मांग रहे थे, बारिश खत्म हो गई। तो आदमी उस मकाम पे जाए, बातिन देखता है खुदा, हमारे बातिन खराब है, हम जिस चीज को नोच रहे हैं दुनिया कुछ नहीं देगी, सिर्फ अफसोस और शर्मिंदगी है बस। बहरहाल कल अयाम गुजरे, बहरहाल ये अयाम वैसे भी कारवान लुटा हुआ शाम की तरफ रवा दवा है, बहरहाल में चंद दिन इमाम जो लोग कहते थे कि मौला आप इतना क्यों गिरिया करते हैं, पैंतीस साल 30 साल से ज़्यादा अरसा बहुत होता है मौला, बस कर दें, कितना रोएंगे। इमाम ने कहा, फरमाया कि हज़रत याकूब का एक यूसुफ खोया था, हज़रत याकूब जानते थे कि हज़रत यूसुफ ज़िंदा है, मगर क्योंकि दूर थे गिरिया इतना किया, आंखें सफ़ेद हो गई, मेरे सामने मेरे 18 यूसुफ कुर्बान हो गए। बाद उल्मा ने पढ़ा करते थे, ज़बाने हाल है बहरहाल, कि रास्ते में जब असीर बना कर लेके जा रहे थे तो धूप की शिद्दतें इमाम के बदन को अजियत करती थी, अगर कोई साहिबान था तो ये 18 सर नेजों पे थे। क्यों ना रोए सज्जाद,
जिसका साहिबान चचा भाइयों के सर हो वो सच्चा।

इमाम एक बागवान में गए, एक बाग में माली से पूछा कि गुलाब को कितना पानी देना पड़ता है। कहा मौला थोड़ा सा पानी है, गुलाब दो दिन तक चल जाता है, उसको पानी की ज़रूरत इतनी। कहा मेरे बाबा के गुलाब को कितना पानी चाहिए था? अली असगर गुलाब था ना, मुरझा गया, पानी नहीं दिया है। कसाई जानवर को ज़िबह कर रहा है, मौला ने कहा इसको पानी पिलाया? हाँ मौला, हम मुसलमान है, ज़िबह से पहले पानी पिलाते हैं। मौला जमीन पे बैठ गए, कहा वो कैसे मुसलमान थे, मेरे बाबा को पानी नहीं पिलाया उन्होंने। खुदा आपका इसका अजर आजादार है, हम लोग क्या रोएंगे जो सैयद सज्जाद ने गिरिया किया। खाना लाते थे तो मौला रोते थे, पानी पिलाओ तो मौला रोते थे। हम मौला आप जमीन पे क्यों सोते हैं, आप बिस्तर पे क्यों नहीं सोते, जमीन पर आप लेटते हैं। कहा मेरे बाबा को भूखा और प्यासा मार दिया, मैं आराम कैसे करूं। अज़ादारा ने मौत, खूब ये सख्तियाँ इमाम की आप सुनते रहे। आजाम अयाम अज़ा के थे, मैं तो तबर्रुकन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इमाम के लिए सबसे सख्त गो के बाकी लोगों ने तो फिर करबला में अपनी शहादतें दे दी, मगर इमाम पूरे रास्ते शहीद होते रहे, पूरे रास्ते शहीद। जब इमाम को जहर दिया, इमाम को गुस्ल कफन दे रहे थे, तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये आपके बाबा के कंधों पे निशान कैसे थे। इमाम खुद फरमाते हैं कि मेरे बाबा के गले में लोहे का तौक था, धूप सूरज की जब गर्मी पड़ती थी ना तो ये गरम हो जाता है। इमाम ने एक दफा उमर इब्ने साद लाइन से कहा कि मुझे अमामे का कपड़ा काट के दे दो, कहा ये तौक अजियत करता है, कहा जैसे ही हटाया ताजा खून निकलना शुरू हो गया। तो ये सब सख्तियां इमाम करते रहे, मगर जब इमाम से पूछा कि सबसे सख्त क्या था, तो मौला कहते हैं हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम। मौला शाम में ऐसा क्या हुआ? रावी कहता है मैं शाम में दाखिल हुआ, मैंने देखा लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने, ईद का समा है, लाखों की तादाद बयान होती है कि शाम के अंदर मेला लगा हुआ। उसने कहा कोई त्यौहार तो नहीं, पूछा ये क्या है, कहा कुछ बागी थे मारे गए और कुछ को असीर बना के लाया है। अज़दारा ने मोहतरम बस वो कहता है मैंने देखा, जब मैंने सर नेजे पर देखे तो मैंने कहा ये तो जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं जैसे आगे जब मेरी इमाम को देखा, मैंने कहा मौला ये क्या हो गया? इमाम ने कहा कि कुछ पैसे हैं ये जिनके हाथों में नेजे हैं इनको दो और इनसे कहो कि आगे की तरफ जाएं, ताकि लोगों की निगाहें मेरे अहले हरम पर ना पड़े। अल्लाह ने मोहतरम खुद यह इमाम के लिए बड़ा सख्त था कि गैर का मजमा और अली की बेटियां बेहजाब। अल्लाह अकबर। बस अज़ादारा ने मोहतरम जब 13 मुहर्रम को इजाज़े इमामत से इमाम को बुलाया, इमाम आए, एक एक कर इमाम ने दफन किया सबको, लेकिन जैसे ही एक बदन पे पहुंचे कहा मैं अकेला दफनाऊंगा। अज़ादारा ने मोहतरम मकातिल कहते हैं कि इमाम ने